0: महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
2: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृहमंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्य वर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
3: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया

0: या है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
0: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमरीका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमरीकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियां और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा गोवा के मुक्ति संघ

0: ग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद ए मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष तीन स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल क्षेत्र में भी भत्ता बढ़ा। पंजाब केसरी ने 48 साल पहले की खौफनाक घटना को याद किया है, गीता और संजय के हत्यारे रंगा बिल्ला को आज भी नहीं भूली दिल्ली। 26 अगस्त 1978 को मासूम भाई बहन का अपहरण कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। कल हुई मूसलाधार वर्षा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, थम गई दिल्ली, गुरुग्राम में सड़कें धंसी, हाईवे पर गहरा गड्ढा, एनसीआर में जलभराव से लगा जाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। और दुनिया भर में ईद ए मिलाद उन नबी की रौनक, केरलमवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिव्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ 30,000 करोड़ रुपीज एट प्रगति मीटिंग। यूनियन होम

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के उपलक्ष्य में कल पंजाब और हरियाणा के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ का आयोजन कर रहा है। ये संवाद मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल, फिटनेस और युवा नेतृत्व वाले विकसित भारत के दृष्टिकोण को एक साथ जोड़ना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देशभर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेइचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय लीडर से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मजबूत कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देशभर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने कहा है कि देश में वर्तमान में फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं और स्थिति सामान्य मौसमी इन्फ्लुएंजा जैसी ही है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केरल में ओणम का सबसे शुभ दिन तिरु ओणम्मा भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद के एक अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में आग लगने से 14 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने एक बयान में बताया कि अस्पताल के मातृ और शिशु वार्ड की तीसरी मंजिल पर आग लगने से नवजात शिशुओं की मौत हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मिला जुला रुख देखने को मिला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 95 अंक बढ़कर 77,751 पर और निफ्टी 27 अंक गिरकर 24,308 पर आ गया। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे अंतिम मैच के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में भोजन अवकाश तक 2 विकेट पर 83 रन बना लिए थे। श्रीलंका पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 अंक बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 290 in the first innings. Resuming the first innings at 265 for 8 this morning, the hosts managed to add only 25 runs. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses leading members of Indian business community in Toronto, Canada, says India's transformation is structurally driven by rapid urbanization and world-class digital infrastructure. Chief Minister Rekha Gupta launches Delhi Lakshmi Yojana, hands over approval letters to 2,500 beneficiaries, and Indian Medical Association issues public health advisory on H1N1 influenza spread in country, says no cause for panic, just heightened vigilance required. Festival of Onam been celebrated with tradition fervor. Birthday of Prophet Hazrat Muhammad, Eid Miladun Nabi, been celebrated in various parts of the country. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर दिया। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पैगम्बर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पूर्वी और उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
2: India today stands as the fastest.
3: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
2: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
1: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु है।
2: इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशंस हैव सीन।
3: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।
2: ब्रिज बिटवीन टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज एंड टू इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज।
1: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भविष्य केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित

0: और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
1: खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले व्यवधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
2: हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंट।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
3: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया।
4: इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA H1N1 का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। IMA ने विशेष रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमिक्सुलिन, क्लूवेंटनेट और सेफिक्साइमिम जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की चेतावनी दी है। IMA ने बताया है कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिरदर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR, AIEEPG और AICE PhD 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: आकाशवाणी कलकत्ता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण की इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कलकत्ता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार के अधीन ये केंद्र आज आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दास गुप्ता के साथ अभिरूप भट्टाचार्य जी आकाशवाणी।

0: समाचार कलकत्ता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: तिरुओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए बनाया जाता है। फसल का ये प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरीमाला, अरुणमुला और गुरुवायूर सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओण साध्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दीं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से उड़ीसा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर, नंदापुर और उलग पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। IMD ने आज उड़ीसा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ सुबह तिब्बत की दिशा से आती हुई भोटे कोशी नदी में उमड़ी। नेपाल की सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिरुमुरे और पास के सियाफुरुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें 1 वर्षीय 2 डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जंपरों ने शून्य से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना ली हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार। एक

हजार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मार्कंडेय, ममता मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता की कोई उम्र नहीं होती, ना ही सीमा होती है, बस जहाँ मन और विचार मिले वहाँ हो जाती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
1: और अगला संदेश हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सर प्रेम नमस्ते जी। टेलीविजन की कहानी सुनने की बहुत ही अभिलाषा थी, ये अभिलाषा उमंग कार्यक्रम ने पूरी कर दी है। टेलीविजन की कहानी नाटक के रूप में उमंग कार्यक्रम में सुनकर बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। उमंग कार्यक्रम की समस्त टीम बधाई का पात्र है, बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। श्रृंखला ये भी जानिए में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है।
1: श्रोताओ, क्या आपने कभी ऐसी रात की कल्पना की है जब आसमान में तारे गिने न जा सकें, जब आकाश गंगा किसी दूधिया नदी की तरह स्तर के ऊपर बहती हुई दिखाई दे और जब ऐसा लगे मानो धरती और आकाश के बीच की दूरी ही समाप्त हो गई हो। विमलेश जी, क्या ऐसी जगह है भी?
2: जी अजीत जी, सच्चाई तो ये है कि महानगरों की भागम भाग और व्यस्त जीवन में शायद हमने आकाश की ओर देखना ही छोड़ दिया है या भूल गए हैं, और यदि आकाश को देखना भी चाहें तो प्रदूषण के कारण धूल और धुआं छोड़कर कुछ और दिखाई ही नहीं देता।
1: तो इसीलिए उमंग कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आप सभी श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे अनोखे गांव में जहां दिन में हिमालय की विराट मनमोहक सुंदरता मन मोह लेती है और रात होते ही पूरा आकाश मानो चमकते हुए तारों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे ही हीरे जड़े हों।
2: जी, इस अद्भुत स्थान का नाम है हनले, जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। लोग कहते हैं यदि रात में आकाश की सुंदरता के दर्शन करने हो तो हनले गांव से बेहतर कोई और स्थान हो ही नहीं सकता।
1: जी हाँ श्रोताओ, हनले एक छोटा सा गांव है लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। यहाँ ना शोर है, ना ऊंची ऊंची इमारतें और ना शहरों जैसा प्रकाश प्रदूषण। यही कारण है कि रात का आकाश यहाँ इतना स्वच्छ दिखाई पड़ता है कि हजारों लाखों तारे एक साथ चमकते हुए नजर आते हैं। आकाश गंगा भी इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि लगता है मानो किसी चित्रकार ने नीले कैनवस पर दूध की एक चमकती धारा उकेर दी हो।
2: इसी अद्भुत प्राकृतिक वातावरण के कारण हनले गांव को सरकार द्वारा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रात के प्राकृतिक आकाश को सुरक्षित रखना भी है।
1: लेकिन एक बात समझ में नहीं आई विमलेश जी कि डार्क स्काई क्यों कहा जाता है? मेरा मतलब डार्क स्काई रिजर्व का क्या मतलब है?
2: अजीत जी, ये बहुत ही वैज्ञानिक और रोचक प्रश्न है। यदि हम अपने महानगरों को देखें या गांवों को भी देखें तो आकाश में प्रकाश प्रदूषण बहुत अधिक है, यानी शहरों और गांवों में बिजली की कृत्रिम रोशनी का अंश आकाश में जरूर होता है। करोड़ों बल्ब जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, शहर रोशनी से चकाचौंध हैं। इसीलिए हमारे ऊपर जो आकाश है वो प्राकृतिक रूप से अब डार्क नहीं रहा।
1: जी हाँ, आपने बहुत

0: सही बताया। लद्दाख की पहाड़ियां, विशेषकर हनले गांव के आसपास का आकाश इतना स्वच्छ और कृत्रिम रोशनी से वंचित है कि वो डार्क है।
1: जी
0: लाखों करोड़ों तारे आकाशगंगा और बहुत ही खगोलीय घटनाएं, ग्रहों की गति इत्यादि नंगी आंखों से भी स्पष्ट दिखाई देती हैं।
1: और अजीत जी, यही कारण है कि हनले में स्थित है भारतीय खगोलीय वेधशाला, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रमुख वेधशालाओं में से एक है। यहाँ विशाल दूरबीनों की सहायता से वैज्ञानिक ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का अध्ययन करते हैं।
0: जी हाँ, कितना रोचक और प्रेरणादायक है ये जानना कि जब देश के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब हनले की पहाड़ियों पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के नए रहस्यों की खोज में जुटे रहते हैं।
1: जी अजीत जी, एक बात और साझा करना चाहती हूँ। हनले केवल विज्ञान का केंद्र ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी घर है। यहाँ स्थित लगभग 400 वर्ष पुराना हनले मठ बौद्ध संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: जी, आपने बिल्कुल सही बताया। पहाड़ की चोटी पर स्थित ये मठ लगता है दूर से ही यात्रियों का स्वागत कर रहा है। यहाँ की प्रार्थनाएं, रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज और शांत वातावरण मन को गहरे सुकून से भर देते हैं।
1: श्रोताओं, जैसा कि हमने बताया, हनले का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। दूर दूर तक फैले भूरे शुष्क पहाड़, नीला आकाश, ठंडी हवाएं और विशाल मैदान इस स्थान को किसी दूसरी नई दुनिया जैसा बना देते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, यदि जीव जगत की बात करें तो आसपास के क्षेत्र में तिब्बती जंगली गधे, हिमालयी मामोर, याक और अनेक दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं।
1: जी
0: इसीलिए तो इस जगह को प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों का स्वर्ग कहा जाता है।
1: बता दें, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। लेह से लगभग 260 किलोमीटर की यात्रा ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन जो यात्री इस कठिन सफर को पूरा करते हैं, वे कहते हैं, हनले पहुंचने के बाद हमें लगता है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। क्यों जी जी, अब समापन किया जाए?
0: जी हाँ बिल्कुल। एक बात लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि शहरों की भागदौड़ में हम अक्सर ऊपर देखना भूल जाते हैं।
1: जी
0: हम चमकती रोशनियों के बीच में रहते हैं, लेकिन असली चमक तो उस आकाश में है जिसे हमारे पूर्वज हर रात निहारा करते थे।
1: जी
0: हंदले हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे सुंदर कलाकृति हमारे सिर के ठीक ऊपर फैली हुई है। बस उसे देखने के लिए थोड़ी शांति, थोड़ा अंधेरा और थोड़ा समय चाहिए।
1: श्रोताओ, अगली बार जब आप भारत के किसी अनोखे स्थान की यात्रा की योजना बनाएं, तो हनले को अवश्य याद रखें। शायद वहां पहुंचकर आपको केवल तारों का संसार ही नहीं, बल्कि अपने मन के भीतर की शांति भी मिल जाए।
0: तो इसी सुंदर विचार के साथ आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। लेकिन सबसे पहले आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800-4405-59 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है, तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए। पहली वेबसाइट है एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ और दूसरी है एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आप इन विकल्पों पर जाकर अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम अरावली की कहानी।
1: एनसीईआरटी की कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और बताता है कि उत्तर भारत को मरुभूमि बनने से बचाने में इसकी कितनी अहम भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
3: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
4: यस मैम।
3: आह, क्या बात है
5: मैम।
3: हाँ बेटी,
5: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
3: बिल्कुल कहा।
5: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
3: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
5: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
3: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
4: यस मैम।
3: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
4: अच्छा।
3: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
4: अच्छा।
3: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
4: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
6: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
3: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
7: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
3: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
4: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
3: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
6: जी मैम,
5: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
3: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
7: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
3: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
4: सॉइल इरोजन,
3: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही है।
2: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
3: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों, जानना चाहोगे ना?
4: जी मैम।
5: यस मैम।
3: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
5: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
3: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
7: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
3: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
2: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
3: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य है तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
2: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
3: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
2: ओह,
3: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
2: जी।
3: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
4: जी मैम।
2: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
4: बहुत अच्छी लगी।
2: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
7: धन्यवाद मैम।
0: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
2: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
0: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो श्रोताओं, अभी हमने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: आइए सुनते हैं एक और कहानी। शीर्षक है सुखो माजरी गांव की कहानी।
2: नव भारत वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा बताया गया है कि कैसे सुखो माजरी गांव के लोगों ने वहां की बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया और सूखे की समस्या से छुटकारा पाया।
1: एक गांव था सुखो माजरी, जो काफी हरा भरा था। चारों तरफ पेड़ पौधे और प्रकृति की सुंदरता थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके आसपास के जंगल धीरे धीरे काट दिए गए। गांव वालों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जंगल कटने के कारण यहां जल स्तर घटने लगा। कुओं और तालाबों का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा और नदियों का पानी मटमैला हो गया। गांव में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और लोग पानी की कमी से जूझने लगे।
3: माँ माँ, पानी दोना बहुत प्यास लगी है।
4: बेटा, घर में पीने के लिए पानी नहीं है। अपने बाबू को बोलो ना, कहीं से पीने का पानी ले आए। अजी, सुनते हो?
5: हाँ, बोलो, क्या हुआ?
4: घर में एक बूंद पानी नहीं है, ना तो खाना पकाने के लिए है और ना ही पीने के लिए।
5: अच्छा ठीक है, करता हूँ मैं कुछ, लाता हूँ।
1: गांव वाले पानी के लिए परेशान थे, किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। परंतु सन 1970 में कुछ ऐसा हुआ कि सुखो माजरी गांव पूरा बदल गया। लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं। हुआ ऐसा कि गांव के ही एक व्यक्ति झुनुआ को एक उपाय सूझा। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा,
5: गांव वालों, अगर आप सभी अपने इस खूबसूरत गांव को बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो।
6: जी जी।
5: हम सभी गांव वालों पर जल और जंगल की मुसीबत आई है, इसका हमें डट कर मुकाबला करना होगा। सभी को मिलजुल कर काम करना होगा।
7: हाँ हाँ, आप उपाय तो बताइए।
6: हाँ, उपाय बताइए।
5: तो सुनिए, सबसे पहले हम सबको एक ग्राम सभा बनानी होगी।
8: ग्राम सभा?
7: ठीक है।
8: ठीक है।
5: समझे? और हर किसी को अपना पूरा योगदान देना होगा।
6: हाँ, तैयार है।
5: बच्चों, तुम्हें जगह जगह पौधे लगाने हैं।
9: जी, हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे।
10: और अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे।
5: तो तय रहा कि बच्चे पौधे लगाएंगे और रामू, तुम अपने साथ मीना, बिरजू और भोला को ले लो और बारिश का पानी जमा करने का प्रबंध करो।
11: वो कैसे?
12: क्या गड्ढा बनाना है?
13: तालाब नदी में तो पानी गिरता ही है और इकट्ठा भी हो जाता है,
7: फिर इसकी क्या जरूरत है?
11: हाँ हाँ, मीना और भोला ने बिल्कुल ठीक कहा।
5: वो तो ठीक है, लेकिन हमें पानी इकट्ठा करने के नए तरीके अपनाने होंगे।
7: नया तरीका? कौन सा तरीका? बताओ बताओ।
13: हाँ, हमें भी बताओ।
12: हमें भी बताओ।

0: हमें एक बड़ा सा सिंचाई का टैंक बनाना होगा।
1: सिंचाई टैंक?
2: सिंचाई टैंक,
0: ताकि हम पानी वहाँ इकट्ठा कर सकें। उसके चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगाने होंगे ताकि हरियाली बढ़े। इससे पानी की कमी काफी हद तक दूर हो सकेगी।
3: अच्छा, सुझाव तो बड़ा अच्छा है।
4: हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा।
5: तो साथियों, सुखो माजरी गांव में ग्राम सभा बनाई गई और सबने मिलजुल कर जल और जंगल की समस्या से निपटने के लिए काम करना शुरू किया और सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग गए। सभी ने खूब मेहनत की, मिलजुल कर काम किया, गड्ढा खोदकर सिंचाई टैंक बनाया, गांव में जगह जगह पेड़ पौधे लगाए गए। सभी गांव वालों की मेहनत और कड़े परिश्रम से सुखो माजरी गांव अब फिर से हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखने लगी। जल स्तर में भी सुधार हुआ और पेड़ों के लगने से वर्षा भी खूब होने लगी। कुओं और तालाबों में भी पानी रहने लगा। कुछ ही समय में सुखो माजरी गांव हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। तो दोस्तों, जो सुखो माजरी गांव में हुआ वह किसी भी गांव में हो सकता है। आप भी पेड़ पौधे लगाएं, पानी जमा करने के उपाय सोचें और पर्यावरण संरक्षण के बारे में अपने आसपास के लोगों से चर्चा करें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुखो माजरी गांव की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा, तकनीकी समन्वय बटीलैन लिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, परामर्श अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओं, कैसे लगे आपको हमारे आज के कार्यक्रम और हमारी आज की जानकारी, जरूर लिखिएगा। तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
1: चेतना,
0: जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग।

0: मम्मी भी अक्सर बोलती है कपड़े उतारो और ये वो भूल जाओ तो प्रॉब्लम हो जाती है. इसीलिए मैंने और मेरी टीममेट्स इप्सिता, अन्वेषा और शानवी हम सब ने मिल करके सोचा कि हम कुछ ऐसा बनाते हैं कि काफी अच्छा उसका इम्प्लीमेंट करा जा सके. हाँ
1: तो मतलब चार लोग आपके जो दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, चारों ने मिलकर ये बना लिया।
0: जी, सारे ने मिलके बनाया है.
1: अच्छा, हमारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। आप सरकार द्वारा संचालित कई बेहतरीन योजनाओं, प्लेटफॉर्म से वित्तीय सहायता, मेंटरशिप और अपने प्रोजेक्ट का पेटेंट कराने का भी मौका प्राप्त कर सकती हैं, है ना?
0: अच्छा जी.
1: अच्छा, एक बात और बताइए, और क्या करने का इरादा है इसके अलावा?
0: और इसके अलावा बस इसी तरह से इनोवेशन करने का एंड देन लाइफ को और बेटर और इजी बनाने का प्लान है फ्यूचर में.
1: अच्छा, क्योंकि दिल्ली शहर में है ना, बहुत ट्रैफिक हो जाता है। खोज करिएगा इस विषय पर भी कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि ट्रैफिक बहुत स्मूथली चलता रहे और लोग अपने घर से दफ्तर पहुंचते हैं, दफ्तर से जब घर आते हैं तो वो जल्दी पहुंच सकें।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: चलिए नवा, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। आप बिल्कुल लाइव थे आकाशवाणी एफएम रेनबो पर और आपने बताया कि बारिश आने से पहले, क्योंकि अक्सर यही होता है कि मौसम विभाग जो होता है वो हमें बता देता है कब कब बारिश होगी, हम इंतजार करते हैं, लेकिन आपका इनोवेशन
0: बिल्कुल
1: ये बता देगा पहले से ही कि बारिश शुरू हो चुकी है और घर को भी कवर कर देगा, है ना?
0: जी, बिल्कुल
1: चलिए,
0: बिल्कुल
1: बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद नवा हमसे बातचीत करने के लिए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो प्रोग्राम सिटी लाइट विद एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव, और अभी हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में, कुछ देर में, और एक खास प्रोग्राम चल रहा है दिल्ली शहर में और बस खत्म होने वाला ही है वो प्रोग्राम, और इसी का हम इंतजार भी कर रहे हैं। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें

0: नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि ऊपर वाला सब देखता है। जी हाँ, ऊपर वाला सब देखता है, लेकिन सुरक्षा के नजरिए से देखें तो हमारी सुरक्षा में लगी फोर्सेस बड़ी मुस्तैदी से सुरक्षा करती है। और अभी दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का

0: आयोजन किया जा रहा है और इसीलिए दिल्ली में सुरक्षा की तैयारियां बहुत तेज हो गई हैं। आप सबका सहयोग भी जरूरी है। वैसे जरूरी तो मनोरंजन भी होता है जिंदगी में, है ना, और इसीलिए दिल्ली में रोजाना कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा होता है जो बहुत ही खास होता है। और आज राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र भारत मंडपम दिल्ली में एक बहुत ही खास प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, आइए उसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर प्रिंसिपल क्यूरेटर एम अंसारी जी, फोन लाइन पर आइए उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हाँ नमस्कार सर।
0: सर नमस्कार, कैसे हैं आप सर?
1: हाँ बस बढ़िया।
0: अच्छा, आज बहुत बहुत मुबारक हो इस जो इनॉग्रेट हुआ है, हम कह सकते हैं आम पब्लिक के लिए जिसके शुरुआत किया गया है प्रागैतिहासिक जीवन दीर्घा, ये क्या है सर, इसके बारे में बताइए जरा।
1: यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र पर एक हम लोगों ने प्री हिस्टोरिक लाइफ जो प्रागैतिहासिक दीर्घा है वो दर्शकों के लिए खोला गया है। और ये दीर्घा तब जो लुप्त हो चुका है, जो संसार लुप्त हो चुका है, उसका वहां पे ले जाने का एक प्रयास है। लाखों वर्ष पहले जो मौजूद थे जीव जंतु, वहां की एक रोमांचक झलक ये प्रस्तुत करता है। तो ऐसी प्रजातियां जो कि बहुत पहले लुप्त हो चुकी हैं हमारे ग्रह से, और अलग अलग भूवैज्ञानिक काल की मशहूर प्रजातियां हैं इसमें, जैसे ट्राइलोबाइट या विशाल बिच्छू, और शुरुआती पक्षी जो है, या और साथ में अब उसके बाद जो डायनासोर का युग था, और अंत में हम लोगों ने नियंडरथल से को समाप्त किया है। तो जिस क्रम में उनका पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, उद्विकास हुआ था, उस क्रम में इसको दिखाया गया है
0: जी। अच्छा, इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में आपके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां भी आई होंगी।
1: हाँ, चुनौतियां ऐसे कह सकते हैं कि विजिटर का ये एरिया ऐसा होता है कि थोड़ा विजिटर को रोक करके, और फिर हम गैली कोई रिनोवेट करते हैं या बनाते हैं तो थोड़ा विजिटर को थोड़ी परेशानी होती है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा, और बहुत टफ टाइम टास्क था हमारे पास, मतलब 6 मंथ में इसको करना था, तो वो हमारे सामने एक चुनौती थी कि इतने कम समय में हम कैसे इसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमारी टीम ने किया इसको, और ये अभी सुविधा दिल्ली वालों के लिए ये उपलब्ध है, तो अधिक से अधिक लोग आकर इसका लाभ उठा सकते हैं।
0: अच्छा, मैं ये देख रहा था जो आपने इनविटेशन भेजा है उसमें देख रहा था, तो गैलरी को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम करोड़ों साल पीछे चले गए हों।
1: जी जी।
0: अच्छा, जो मेहनत की है, जो आपने कहा 6 महीने के अंदर आपने ये समय लगाया, शोध किया, तो आपके इसके अंदर जो सबसे मुख्य आकर्षण क्या है
1: इसमें? बहुत से डिजिटल इंस्टॉलेशंस भी हैं, एक बड़ा सा साइक्लोरामा है जो कि आपको पूरे जीवन की यात्रा, जो जीवन गाथा है पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के और मानव के आने तक, पूरा ही उसमें दर्शाया गया है। वो 70 फीट का एक साइक्लोरामा है डिजिटल।
0: ओके।
1: और बाकी आपके डायनासोर्स हैं जो सब एनिमेटेड हैं, रोबोटाइज्ड हैं, तो आपको सजीव लगेंगे। और बच्चों के लिए ये दीर्घा हमारे पास पहले से थी, लेकिन ये बहुत पुरानी हो गई थी, तो इसको हम लोगों ने रिनोवेट किया है ऐसे कह सकते हैं, और ये दर्शकों के लिए फिर से खुल गई है।
0: अच्छा, इसमें VR और 3D जैसी आधुनिक तकनीक भी है?
1: 3D फिल्म तो हम लोग अलग से दिखाते हैं, वो भी सुविधा हमारे पास है, और हमारी एक VR थिएटर भी है जिसमें आप स्पेस यात्रा कर सकते हैं। तो जितने लेटेस्ट जो गैजेट्स हैं वो सब सुविधाएं भी हमारे पास उपलब्ध हैं। अब ये जो हमारी दीर्घा है प्रीहिस्टोरिक लाइफ गैलरी, इसमें एनिमेटेड मॉडल्स हैं, और एक हम लोगों ने आइस एज डायोरामा बनाया है कि वहां पे आपको जाने से ऐसा लगेगा कि आप आइस एज जो कि 50,000 या 60,000 पहले जो ठंड और ऐसा आभास होता था, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप आइस एज में पहुंच गए हैं। तो मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अर्थ को लेकर के और लास्ट तक ये गैली इसको डिपिक्ट करती है, इसको दर्शाती है, दिखाती है।
0: अच्छा, स्कूल के बच्चों के लिए कोई खास व्यवस्था की गई है कुछ?

0: स्कूल के बच्चे जब हमारे यहाँ आते हैं तो एक गाइडेड टूर हम लोग अरेंज करते हैं उनके लिए, तो ताकि बच्चे इवोल्यूशन को और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को, ये सब जो चीजें हैं उसको डिमोन्स्ट्रेशन के जरिए देख सकें। और डिस्काउंटेड टिकट भी हैं स्कूल ग्रुप्स के लिए। जी,
1: अच्छा, टाइमिंग क्या है सर?
0: सर हमारा म्यूजियम 9:30 to 6 है, ओपन रहता है, और मतलब टिकट तो थोड़ा 5 तक 5:15 तक मिलता है, तो 9:30 to 6 हमारा टाइमिंग है। हमारा ये भारत मंडपम गेट नंबर 4 के पास हमारा है राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र। जी, ये राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद हमारा एक जो पेरेंट बॉडी है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की एक इकाई है, भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार
1: जी
0: के अंदर में है।
1: जी और
0: जी
1: सबसे नजदीकी अगर हम मेट्रो की बात करें, मेट्रो स्टेशन, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट है।
0: जी सुप्रीम कोर्ट है, और ये इंद्रप्रस्थ दोनों के बीच में है ये,
1: अच्छा, ओके।
0: तो वैसे आने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि सीधा इस हाथ में आता है, तो सुप्रीम कोर्ट से आने में सुविधा होती है, और जाने के समय में विजिटर इंद्रप्रस्थ वाला मेट्रो ले लेते हैं।
1: अच्छा, बंद बंद कब होता है अंसारी जी, आम पब्लिक के लिए?
0: ये बंद नहीं है, ये तो हम लोग ओपन हैं पूरे दिन, मतलब पूरे साल ये हमारा सेंटर ओपन रहता है, बस 2 दिन होली दिवाली के दिन बंद रहता है,
1: अच्छा, ओके।
0: बाकी जी,
1: मतलब संडे टू
0: बाकी
1: मंडे की बात हम करें, अगर संडे मंडे, ट्यूसडे वेंसडे
0: हाँ,
1: थर्सडे
0: पूरे
1: फ्राइडे
0: सातों दिन
1: सैटरडे
0: खुला
1: संडे
0: हुआ
1: सब
0: है।
1: जगह,
0: जी जी
1: ओके। तो ये बहुत अच्छी जगह है। तो दोस्तों, आप लोग ने सुन लिया है अंसारी जी से, जो कि वहां पर प्रिंसिपल क्यूरेटर हैं, उन्होंने हमें ढेर सारी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद अंसारी जी।
0: थैंक यू सर।
1: तो दोस्तों, अगर आप भी बनाना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ, तो आप बना सकते हैं और जा सकते हैं यहाँ पर देखने। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जब जाएंगे अपने बच्चों के साथ, या आप बड़े भी जब अकेले जाएंगे, तो आप याद रखिए कि करोड़ों साल पुराने जमाने में आप पहुंच जाएंगे। आपने अभी बस सुना है डायनासोर कैसे चला करते थे, कैसे आवाज होती थी, लेकिन यहाँ डिजिटल डायनासोर बिल्कुल लगेगा कि जीवित है, और आप देखेंगे तो आनंद आ जाएगा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो विद SR, SR बोले तो संतोष राव।

दोस्तों गीतकार आनंद बख्शी ने तो 5 मौसम के बारे में बताए, लेकिन हमारे स्टूडियो में पूरे 6 मौसम होते हैं। जी हाँ, मनोरंजन का मौसम 24 घंटे बना रहता है और इसीलिए हम एक से बढ़कर एक प्रोग्राम लेकर आते हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। जैसे कि अभी 6 बजे से आपके साथ जुड़ जाएंगी भगवती लेकर मैसेज मसाला मिक्स, तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो। इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

0: या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
2: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूँ धान का खेती करता हूँ। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना भी बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: प्रवाचक जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। नेपालदेशे आकस्मिक आप्लावेन 84,300 पर्यटकाः विलीनाः, यत्र शताधिक भारतीयाः संदिग्धाः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना नेपाल प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र शाहेन सह वार्ता विहिता, शोक संवेदना व्यक्ता, मानवीय सहायतायै च आश्वासनं दत्तम्। नेपालस्य आप्लावेन गण्डक नद्याः जलस्तर वृद्धेः आशंकां विलोक्य बिहार राज्येन जलप्लावन सज्जता तीव्रीकृता। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन सर्वविध सहायतां प्रदातुं दृढाश्वासनं दत्तम्। देशे प्रसृत्यमानान् इन्फ्लुएंजा प्रकरणान् विलोक्य IMA संस्थया स्वास्थ्य संचेतना प्रख्यापिता। न भेतव्यं न च संक्षोभः करणीयः, सर्वैः केवलं जागरूकता परिपालनीया इति संस्थया उद्घोषितम्। टोरंटो नगरे वित्तमन्त्रिणः उद्घोषः, तीव्र नगरीकरणेन प्राविधिक क्रान्त्या च भारतस्य संरचनात्मकं रूपान्तरणं जायमानमस्ति। अपि च कोलम्बो स्पर्धायां श्रीलंका दलस्य दृढः प्रत्याघातः, फॉलो ऑन प्राप्य अपि चतुर्थ दिवसान्ते भारतस्य उपरि 16 धावनांकानां अग्रता।

0: తెలుగు చలనచిత్ర గీతం విన్నారు. ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం. మరికొద్ది క్షణాల్లో సమాచార సంధ్య, హిందీలో వార్తలు, అనంతరం న్యూస్ అట్ 9 ఆంగ్లంలో వార్తలు. ఢిల్లీ కేంద్ర నుంచి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార సంధ్యా కే సాథ్ మే విశాల్ శర్మ. नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता. भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया. बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की. भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई. पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी. ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया. और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए. मैच पर भारत की पकड़ मजबूत. और अब समाचार विस्तार से. नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं. बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है. अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे. अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए. बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा. एक रिपोर्ट.
2: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं. नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं. प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है. प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ. इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई. बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है. प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की. समाचार कक्ष से शक्ति सिंह.
1: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. ये हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9779091075000. दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है. उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है. प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है. प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं.

0: नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल साधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं।
3: मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहाँ पे भेजा गया है।
0: इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में अचानक बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया और 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2,500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है।
4: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया।
5: इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500

0: మీరింతవరకు ఆపాత మధురాలు పాత తెలుగు చలనచిత్ర గీతాలు విన్నారు. ఈ కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం. ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం, మరికొద్ది క్షణాల్లో హిందీలో వార్తలు, అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాథ్ మే వినయ్ సక్సేనా. नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा।
2: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851318 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया है कि वह बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्चस्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग जी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया तथा 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे पर समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासियों ने आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलवासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन्नबी आज देश के विभिन्न